का टाटा हो, गौतम का, उनके पत्नी का, विकार का प्रार्थना करने है। विकार का, भगवान की स्मरण का, नाम जपत करने वाले, देखो

करने वाले देखो शार का तीर ले करने जिसमें का सर्व ब्राह्मण रूप करने देखो गौतम का भूरी अंधकार शक्ति और रूप करने देखो बहुत का भूत

0: The vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.
2: योगी आवे मैनू इत्थों दूर ले जा.

वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होना है। हनुमान जी तो वानर थे, वन में उनका वास था।

बृहस्पति वनस्पतिर्सुर भूतो गंधार्यो सुमनोहर विलेपनाम सुर श्रेष्ठाम दूपोयम प्रति ग्रेताम हरित्रदानम मे प्रिपाय ऑफ एवर एक्जिस्टेंस वी बेग ऑफ थी.

चूर्णाटं तांबूलं समर्पयामि। ओं गंगेश्चय मुनीश्चय वागुरावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी आचमनं विनियोगः आचमनं समर्पयामि। ओं पापोहं पापकर्माहं पापात्मं पुण्डरीकाक्षे त्राहि मां पुण्डरीकाक्षे।